मुझ मरियाम बाब कर गए हम दूसरी से मर गत मरियाम बाब कर गए मुझ कंटोम फाल अगल विजय मंगल मचार मगम मचार ब्रह्म प्यार यार वचन जुवाई